0: कम्युनिटी रेडियो बेंसिगर 107.8 प्रस्तुत करते हैं
1: दिल की आवाज,
0: दिलों से दिल तक। दिल की आवाज का सीधा प्रसारण अब से हर रविवार सुबह 10:30 से लेकर 11:30 तक होगा और आपके साथ होगी आपकी शायरी जर्निया। देर किस बात की, अपना फोन उठाइए और हमें डायल कीजिए। डायल करने के लिए हमारा नंबर
1: 0474-293-1111।
0: नंबर एक बार फिर से 0474-293-1111।

0: नमस्कार, दिल की आवाज सुनने वाले सभी श्रोताओं को शाइनी के सलाम, नमस्कार और आदाब। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, ये हमारा सीधा प्रसारण है, तो जल्दी जल्दी कॉल कीजिएगा। हाँ जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आए हैं, तो जल्दी जल्दी कॉल कीजिएगा। हाँ जी, तो शायद पहला कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: जी नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे हो? हम ठीक है, आप बताओ।
1: ठीक है, ठीक है। तीन रेगुलर प्रोग्राम में क्या हुआ जी?
0: हमने सोचा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
1: ओके ओके,
0: छुट्टियां तो सबको चाहिए ना,
1: तो रस्ते ना हो क्या अच्छा है।
0: तो हमने सोचा हम भी थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसीलिए ब्रेक लिया और आ गए वापस। और सुनाओ, कौन सा गाना चाहिए?
1: वो सरफरोश फिल्म की, नेक्स्ट टूथ प्रोग्राम की इस गाना मैं बोल रहा है ना।
0: अच्छा,
1: इसलिए अच्छा गाना है, इसलिए वन सेकेंड बोल रहा हूँ।
0: ओके ओके जी। तो
1: हाल दिल का इधर हो रहा है।
0: अच्छा,
1: वो हाल दिल का इधर हो रहा है, इस गाना।
0: ओके जी, तो आपका दिल का हाल सच में ठीक रहे, हम दुआ जरूर करेंगे। और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया, बुलाते रहिएगा।

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत और एक प्यार सा कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, ये कौन बोल रहा है? ओके जी, नमस्ते। और सुनाओ, करती क्या हो? क्या करते हो? हेलो जी,
1: कुछ नहीं करते
0: हैं। अच्छा जी, घर संभालते हो ना, उससे बड़ी बात और क्या होती है। और सुनाओ, कौन सा गाना चाहिए?
1: फूलों का तारों का, सबका कहना।
0: ये गाना अच्छा लगता है?
1: अच्छा तो लगता है, सब हिंदी गाने तो बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा जी, ओके जी, तो आपके लिए ये गाना

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत और आप सुन रहे हैं हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम दिल की आवाज, जहां पे दिलों की बात होती है, रिश्तों की खुशबू होती है और आपके विचार को मिलता है एक प्यारा सा मंच। और शायद कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
1: हेलो
0: हेलो जी, नमस्ते।
1: नमस्ते जी, बढ़िया है।
0: बढ़िया है, बढ़िया है। आप कैसे हो?
1: आप ठीक है?
0: अच्छा जी, और सुनाओ, मौसम सब कैसा है?
1: क्या
0: मौसम कैसा है?
1: मौसम सुबह भी नहीं है।
0: अच्छा जी,
1: थोड़ा थोड़ा बैसा।
0: अच्छा जी, कौन सा गाना चाहिए सर?
1: देखो मेरा जिंदगी में तुम ये बहार बन के
0: आई हो, मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। ओके
1: ठीक है।
0: ओके जी, तो आपके लिए ये प्यार सा गाना हम जरूर लगा देंगे। और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया, बुलाते रहिएगा।

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत और शायद कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी।
1: मैं स्टीफन बात कर रहा
0: जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो?
1: ठीक है।
0: और सुनाओ।
1: एक विजय के लिए एक गाना चाहिए।
0: कौन सा गाना चाहिए?
1: ये कौन सा है, मुश्किल नहीं है।
0: अच्छा, एक दूजी फिल्म का
1: डेडिकेशन है मंगाड़े विमला जी मोहन दोनों को।
0: अच्छा जी, ओके जी। तो आपका ये प्यार सा गाना हम उनको जरूर डेडिकेट कर देंगे। हाँ जी, और दिल की आवाज
1: आपका।
0: अरे यहाँ पे तो एकदम मस्त, वहाँ बताओ।
1: ओके, मेरे ठीक है।
0: ओके जी, तो गाना सुनो और लौट जाओ।
1: ओके, थैंक यू।

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत, और शायद कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कैसे हो?
1: ठीक है, आप सब लोग कैसा है?
0: बस यहाँ पे सब ठीक। नाम नहीं बताया।
1: मेरा नाम है सुरेश।
0: नमस्ते नमस्ते, और सुनाओ?
1: अभी 5 महीना का ऊपर हो गया बुलाते।
0: जी जी जी, और सुनाओ?
1: प्यारा भाई मर गया था, इसका वजह से मैं
0: बाद में। अच्छा जी।
1: मर गया 2-3 महीना का अंतर है अभी।
0: ओके ओके ओके।
1: 5 महीने जनवरी में दाखिल कर रहा हूँ, हो गया।
0: अच्छा जी। ओके ओके।
1: 2-3 महीने में ट्रीटमेंट में था।
0: अच्छा,
1: मेरा प्यारा भाई था वो।
0: ओके जी।
1: मैं गाना भाई के लिए करते हुए।
0: कौन सा गाना चाहिए सर?
1: मेरा जीवन कोरा कागज से गाना।
0: बहुत जी, जरूर लगा देंगे, और हम दिल से दुआ जरूर करेंगे कि उनकी आत्मा को हमेशा शांति रहे। ओके जी।
1: तो
0: बस यहाँ पे सब ठीक सर।
1: बारिश कैसा है?
0: बस बारिश, पहले तो गर्मी गर्मी गर्मी थी, अभी बारिश बारिश बारिश है।
1: गर्मी भी है?
0: हाँ है, लेकिन पहले से तो कम ही है,
1: थोड़ा कम है।
0: जी जी जी,
1: आने के जाने
0: तो कम ही है,
1: थोड़ा कम है।
0: जी जी
1: जी, आने के जाने का मुश्किल है।
0: जी जी जी। ओके जी, तो आपके लिए प्यार से गाना हम जरूर लगा देंगे, और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया। बुलाते रहिएगा।

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत और एक प्यारा सा कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
1: हेलो सैनी जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग
0: जी। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे हो?
1: नमस्ते, बढ़िया एकदम। अभी 76 चालू है, घर पे आराम कर रहे।
0: अरे ये तो आपका, आपका, जी
1: आप बोलिए
0: जी, कहिए।
1: आप जो टेलीकास्ट कर रहे हैं वो सब सुन के एकदम मजा लूट रहे हैं।
0: अरे ये मौसम भी ऐसा है, उम्र भी ऐसा है। अभी तो आपने अपनी लाइफ की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब एकदम पूरा करके अभी तो रेस्ट का समय है, तो हमारा रेडियो एंजॉय कीजिए। हाँ
1: जी,
0: और सुना सर, कौन सा गाना चाहिए?
1: जिंदगी में हर काम के लिए हम टाइम रहते हैं। अभी
0: जी
1: आराम करने
0: का, अभी तो आराम करने का टाइम है और और हमारा रेडियो पूरा दिन सुनने का टाइम है।
1: आजी आजी
0: जी,
1: क्योंकि टीवी देखने से अपने को उधर बैठ के अपना टाइम बर्बाद हो जाता है, क्या गाना भी सुन सकते
0: हैं,
1: आराम से अपना काम भी हो जाता है।
0: जी जी जी। और सुना सर, कौन सा गाना चाहिए?
1: खुशने वाले तेरा जवाब नहीं,
0: अरे
1: जराना फिल्म से मोहम्मद रफी जी की गाना।
0: जी जी, बहुत प्यारा गाना है, बहुत बहुत ही प्यारा
1: हर
0: जी
1: गाना, बहुत बढ़िया है।
0: जी जी जी,
1: मैं बहुत पसंद कर रहा
0: हूँ। ओके जी, तो ये प्यार सा गाना हम आपके लिए जरूर लगा देंगे और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया, बुलाते रहिएगा।
1: थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत और एक प्यारा सा कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्ते जी, ये कौन बोल रहा है? जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो?
1: मेरे को बेटा फिल्म का एक गाना मंगता है। कोई भी एक गाना चलेगा?
0: अच्छा, कोई भी गाना चलेगा?
1: चलेगा।
0: ओके जी, तो बेटे फिल्म का ये प्यार सा गाना हम आपके लिए जरूर लगा देंगे और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया। बुलाते रहिएगा।

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत और एक प्यारा सा कॉलर आ गया है। हेलो जी,
1: नमस्ते सैनी जी, क्या हाल है?
0: बस एकदम बढ़िया, आप बताओ।
1: लगता है आप एक महीने से नहीं है।
0: अरे ब्रेक किसको नहीं चाहिए,
1: लेकिन बात यही है कि हमें भी बहुत काम ज्यादा था।
0: हाँ, देखा। अच्छा जी,
1: फिर भी सुनता था गाने।
0: अच्छा जी,
1: और इसके बीच में अपना अहम सा उसको मिला था एक बार, लेकिन वो गाना पूरा नहीं मिला।
0: अच्छा,
1: आखिर में वेटिंग लिस्ट में मिला था वो, तो मैं बुलाते बहुत बार लेकिन मिलता नहीं। फिर क्या हाल है जी?
0: बस एकदम बढ़िया। कौन सा गाना चाहिए
1: जी? अवतार फिल्म के दिन महीने साल गुजरते जाएंगे।
0: ओके जी,
1: सबको लिए।
0: ओके जी, तो ये प्यार से गाना हम आपके लिए जरूर लगा देंगे, और दिल की आवाज़ में बुलाने के लिए शुक्रिया। बुलाते रहिएगा।
1: थैंक यू।

दोस्तों, आज के इस खूबसूरत महफिल को यही विराम देने का समय आ गया है। आपकी बातें, आपकी मुस्कान और आपका प्यार ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। याद रखिए, जिंदगी में खुश रहने के लिए सबसे आसान तरीका है जो आपके पास है उसकी कदर कीजिए, और जो नहीं है उसके लिए मेहनत जरूर कीजिए। मैं हूं आपकी दोस्त शाइनी जर्मियास, विदा लेती हूं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और कई नई बातों के साथ। और इस प्यार से विचार के साथ आपकी शाइनी जर्मियास लेती हैं आपसे विदा। अगले हफ्ते मिलने तक नमस्कार।